0: मिंगला शिरे न्याजान चिंका पिचा बाद देखम्या सोलान ने ये इंगा न्याट्वे बीबीसी में मावाई सीजन रे गु लंदन म्यूरो का निजाय एक चुनौनी बारे चुनाव भी पियो बा दिन्या सीजन रे
1: I would be frank with you. We feel abandoned.
0: Russia, Ukraine, they so yet to me.